0: सबैको रेडियो सामुदायिक रेडियो रोल्पा 93.8 MHz।
1: कर्तव्य हाम्रो यो हो नेपालकै पहिलो वातावरण मैत्री रेडियो, रेडियो प्रकृति FM 93.4 MHz।

0: कृष्ण घरती मगर सुनसहरी गाउँपालिका एक सेरम रोल्पा रोल्पा जलजला सेवा समाज दोहा कतारका उपाध्यक्ष एवं नेपाल मगर संघ शाखा कतारका सहानीय एरिया समितिका अध्यक्ष दोहा कतारबाट
1: नया उमंग नया उत्साह अनि लिएर हर्ष फेरि आयो नया वर्ष विकासलाई गति मिलोस् किसानलाई मल युवालाई रोजगार मिलोस् माटोलाई जल।

0: कृष्ण घरती मगर सुनसहरी गाउँपालिका एक सेरम रोल्पा रोल्पा जलजला सेवा समाज दोहा कतार का उपाध्यक्ष एवं नेपाल मगर संघ शाखा कतार का सहानिया एरिया समिति का अध्यक्ष दोहा कतार बाट
1: नया उमंग नया उत्साह अनि लिएर हर्ष फेरी आयो नया वर्ष विकासलाई गति मिलोस किसानलाई मल युवालाई रोजगार मिलोस माटोलाई जल
2: हस

0: न्यू रोलपाली मोबाइल एंड इलेक्ट्रोनिक्स सेंटर तथा रोलपाली सोलर एंड प्रिंट सेंटर सुनसहरी गांव पालिका तीन जरबांग बाहरी गांव रोलपा।
1: हमारा सेवा हमी कहाँ सब कंपनी का सोलर सेट साउंड सिस्टम टीवी डिश होम वाईफाई बिक्री मरमत तथा प्रमाण पत्र सूचना टाइपिंग प्रिंटिंग।
0: प्रोपराइटर खबर कुमार घरती मगर संपर्क मोबाइल नंबर 9849206664 र 9849 4073
2: अध्यारोमा ज्योति छर्ने जुन बनोस नयाँ वर्ष सबै सामु नबिर्सने गुण बनोस नयाँ वर्ष सडक र गल्लीतिर चिसा रात काट्नेलाई अति सुन्दर न्यानो त्यो ऊन बनोस नयाँ वर्ष सबै सामु नबिर्सने गुण बनोस नयाँ वर्ष अध्यारोमा ज्योति छर्ने जुन बनोस नयाँ वर्ष।
3: वसन्त ऋतुको बहार सँगै भित्रिएको नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा यस पालिकावासी सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक दल सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी विभिन्न पेसाकर्मी शिक्षक विद्यार्थी किसान मजदुर कलाकार पत्रकार साहित्यकार उद्यमी व्यापारी युवा क्लब आमा समूह लगायत सम्पूर्ण पालिकावासीमा सुख सुस्वास्थ्य एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना सहित शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: जनक पुनमगर अध्यक्ष सरिता केसी उपाध्यक्ष र धनी प्रसाद खड्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं रुन्टीगढी गाउँपालिकाको कार्यालय होलेरी रोल्पा।